करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

हेलो फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनना मत मत स्वागत है। मैं हूं तुंदी आरजे नेहा शर्मा, डोगरन सोल। ते मेरा जिला डुग्गर प्रदेश है वो वीर ते वीरांगनाएं कन्ने प्रोचे दा है। इंया के एक डुग्गर प्रदेश ते शूरवीर है जिन्हें की दुश्मने भी सलाम किता। उन्दी जेड़ी वीर गाथा वो अज भी आर्मी च मिलिट्री च लोग एक एग्जाम्पल दे तौर पर जरूर शेयर करते ने। ते जिन्हें भी इतिहासकारों ने इन्होंने ही पता लगी गई होना है कि एक कौन है। जिया कि मैं तुसें आख्या कि वो पहले शूरवीर है जिन्हें दुश्मने सलाम किता, उन्दी समाधि दुश्मने दे इलाके च बनी ठीक युद्ध के बाद। ते ये जिहड़ा गौरव है अपने आप च, ये सिर्फ इतिहास च एक के बंदे गीत होएदा है। ते ये बंदा कौन है सोचो सोचो। तुस पहले सुनो है मिठा हरा गीत, ओहदे बाद मैं दसनी हां, मैं कुंदी गल करानी हां।

बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। ते आज गल करा दे डुगर प्रदेश दे शूरवीर जिंदा नाम है जनरल जोरावर सिंह जी। इंदा जन्म 15 अप्रैल 1786 होया हा। ए इंदू राजपूत फैमिली च जन्मे है। हुन प्रेजेंट च इलाका पौंदा है हिमाचल प्रदेश च। इन्हें बड़े निक्के होंदे गे घर छोड़ी दिता हा। इन्हें बड़े गे निक्के होंदे तलवार चलाना धनुष विद्या ही सब सीखी लेता हा। ते लोग बड़े तारीफ करते हैं कि निका टुमर च कोई इन्ना कौशल किया हो सकता है। ते इंदे उसी कौशल ने उसी शौर्य ने इन्हें राजा गुलाब सिंह हुंदे आर्मी च भजाई दिता। इंदी कार्य क्षमता इन्नी अच्छी ही कि सारे बड़ी तारीफ की। इन्हें बड़ी ही जल्द उस आर्मी का जनरल बनाई दिता गया। ते गुलाब सिंह जी ने इन्हें पूरा कार्यभार सौंप ओड़िया रियासी इलाके का ते अगे पिछे के इलाके का। ते बस फीके हाँ, तो सुनो अगला गीत।

0: CFTC.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सो बिल्कुल जी, स्वागत है एक बार फिर पंजाबी लहरां दे इस हिस्से विच। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्राप्त संधु, मेरे नाल रमेश हशियारपुरी जी पंजाब दी धरती तों जुड़े हुए ने, सो देश दुनिया दी खबरां ते झाक पा रहे ने। सो 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातां हो रहियां ने। और नाल दी नाल हुण गल करिए महिला राखवांकरण बिल दी। रमेश जी, भाजपा वालों पार्लीमेंट दे विच हुण फिर तैयारियां खिंचियां जा रहियां ने कि मुड़ महिला राखवांकरण बिल लैके आया जाए, ये सारी की खबर है जी?
3: संतु जी, ये मसला भारत दियां लोकसभा दियां जिहड़ियां 543 सीटां, वह सीटां वधाई जाण दे नाल सीधे तौर ते मसला जुड़दा है। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी मौके दी साडी सरकार है, केंद्र वाली सरकार।

लोग खूबसूरत मुल्क सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। ये कैनेडा दे विच सानू तुसी सुन रहे हो इस समय अपने रेडियो सैट्स के उत्ते ट्रांजिस्टर्स इंटरनेट की मदद के नाल ओंटारियो दे अलग अलग शहरों के सारे 400 सीरीज हाईवेज 1000 किलोमीटर के रेडियस के ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ तुसी जिथे लगभग होर चार या पांच फ्रीकुएंसीज दे राही साउथ एशियन प्रोग्राम सुनते हो पर लोकल सुनते हो पर लोकल तो बाद अगर कोई सुन रहा है सानू एम 530 से सुन रहा है लंडन किचनर वाटर कैम्ब्रिज का जिथे असी दावा करते हैं एक्सक्लूसिविटी से सुन रहे हो तुसी उत्थे सानू नाइग्रा फॉल तो लैके तुसी बैरी तक और सानू तुसी ओशवा तो लैके बेलवल तक ईस्ट विच नॉर्थ ईस्ट विच सानू ओटवा नू जांदे आ तुसी लिंडसी पीटरबरो तक सुन रहे हो। तो इस रेडियस के तकरीबन कई हज़ार लोग जोड़े है जो लख की गिनती च ने हज़ार सुन रहे होंगे ने ते कई हज़ार लोग लगभग 80,000 तो 1,00,000 लोग जोड़े आ तकरीबन सानू सुन रहे होंगे ने। तो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़ती कला वाला निरभाओ निरवैर रहेगा मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे। चलिए फिर एक सफर दे वाल बहुत खूबसूरत पर थोड़े साथ दे नाल

0: ये तकलीफ होती, मिलिट्री बोलती मेरा हिस्सा मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, ऑपोजिशन कहता मेरा हिस्सा मेरे पास आना चाहिए, इमरान खान कहता है मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, मैं तो करोड़ों रुपए को लात मार के मैं तुम्हारे पास आ गया खिदमत करने के लिए, तुमको सुधारने के लिए आया हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई खाओ, खाने में इतराज नहीं है, मगर एक प्लेट खाओ। तुम कह रहे जी पूरा देखा पूरा लंगर खाऊंगा मैं, तो ये तो झूठ है, गलत है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे। यह इख्तलाफ हो गया, बस इतनी सी बात है, वरना बोलते वो तोशा खाना, ये सब इल्जाम है। इसके ऊपर बड़ा गहरा शेर है हमारे उस्ताद का, ये मतासम ये अदालत तो एक बहाना है, जो तयशुदा है वही फैसला सुनाना है। ऐसा नहीं होता बहन जी कि मैं आपको यहां से उठा के वहां बिठा रहा हूं, वहां से आपकी भी कोई पोजीशन है, आप बोलेंगे यार किथे ले जा रहे हैं मुझे बिला वजह के, क्या मुझसे भी तो पूछो कि आखिर मैं क्या चाहती हूं। हर बंदे को इख्तियार है नहीं आपसे पूछने का कि भाई आप क्या चाहती हैं। मामली होटल में गए बहन जी, आप बोलते आज मेरा दिल डोसा खाने का हो रहा, मैं राजमा नहीं खाऊंगी, मेरी मर्जी। कोई ये नहीं बोल सकता आपको नहीं जी आज तो तुसी बिरयानी खा लो, आप बोलेंगे क्यों जबरदस्ती कर रहे मेरे से, मेरा दिल है डोसा इडली पूरी खाऊं मैं वही खाऊंगी। तो ये छोटी सी बात होती हुई भी ऐसा नहीं करना, बिहेव नहीं करना, दुनिया पूरी वॉच कर रही है आपको, फिर आप पे क्या एतबार करेंगे, उसको जाने दीजिए। एक मेरा सवाल है सारी ऑपोजिशन से, कोई ऑपोजिशन पाकिस्तान का मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि सच बोलता हूं मैं भी इमरान खान की तरह। वो या चाइना और जर्मनी, इनको एक अस्पताल के इक्विपमेंट भिजवाया, बोला भाई इसमें आप अच्छे अच्छे चीजें करिए, कोविड के टाइम पे आला किस्म की चीजें थे और सबको इन्होंने बंद कर दिया और वो अस्पताल खुलने नहीं दिया। तो मैं कह रहा हूं चाइना अगर मैं रहता, जर्मनी मैं रहता, तो बोलता था शहबाज को फोन करके कि मैं आपके पास कुछ इक्विपमेंट भिजाया था जब इमरान खान थे जी, वो क्या करे आप, वो अस्पताल में लगे हुए इस्तेमाल हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वापस कर दीजिए आप उसको जी, शिपमेंट के पैसे मैं देता हूँ, जस्ट रिटर्न माई स्टफ, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं भेजाया था, अवाम की खिदमत के लिए बिठाया नहीं, बैठ के उसको खाली म्यूजियम में रखने के लिए। क्या तमाशे कर रहे हैं आप, चंद साल के लिए है आप, लोग आपको याद भी नहीं करेंगे, क्या करते इतना पैसा लेके, दुनिया में कोई ले गया पैसा जो आप ले जाएंगे। इस तरह से बात करना, इंसान को दिखाना बताना कि भाई तुम्हारी हकीकत क्या है, चाहे ट्रंप हो या कोई भी हो, ये सब पूरे जो है अपने आप को समझ रहे हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम 200 साल रहेंगे दुनिया में, बोल रहे हैं वो, कितना बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं, जरा बोलिए आप
1: जी।
0: ये जब तकलीफ होती, कुछ अच्छे काम करो, याद करना। अब ट्रंप है पीछे पड़ा हुआ है हमारे, बोलता फ्रांसीसी जबान का कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, ये कितनी गलत बात है। कोई मैं तुसी बोलूं कि तुसी पंजाबी गल नहीं करना सी किसी दे भी नाल, तो आप बोलते पंजाबी तो मेरी माँ बोली है, मैं कैसे नहीं करूंगी। यानी एक बात बता रहा हूं आपके ऊपर मुसल्लत करना, आप पे साबित करना, आप पे जो है सो फोर्स करना आपको, ये कहां है दुनिया में, ऐसा है कहीं
1: जी।
0: ये सब लोगों को हटाओ, ये पुराने दिमाग के दखियानूसी लोग जो 15-15, 20-20 सालों से आ रहे हैं बैठे हुए, अपना वही सिलसिला चल रहा है, वही पुराना कहावत है पंजाब में, अंधी नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर काजा। बंद करो भाजी, बंद करो, ये सारे चीजें बोल रहा हूं मैं, दैट्स ऑल योर ऑनर
1: जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल देखो, फ्रेंच साडी लैंग्वेज है ना कैनेडा दी, ते कहंदे लै भी फ्रेंच नूं रहण दो, ते दसो भी तुसी दूजे कंट्री दे विच दखलअंदाजी दा मतलब की है, है? ये तो उही डिक्टेटरशिप वाली गल हो गई है, जिवें डिक्टेटर राजे करदे आ भी जो असी कह रहे उवें करो, जिहड़ा कुछ सानू ठीक लगता उहनूं ही तुसी मनणा, तुसी अपनी मर्जी नहीं करनी, जदों कि डेमोक्रेटिक कंट्री है कैनेडा है। सो किवें तुसी अपना ते कब्जा करना चाहुंदे हो या किवें अपनियां ही गल्लां तुसी मनाउणा चाहुंदे हो, क्योंकि जदों भी कोई डील भी हुंदी है ना, कोई ट्रीटी हुंदी है, उहदे विच जिहड़े भी कंट्री है, चाहे दो कंट्री है या ज़्यादा, वह सारे अपनी अपनी गल रखते हैं, फिर वह गल नूं एक दूजे दे नूं भी हाँ जी असीं तुहाडी आह मन रहे हैं, तुसीं साडी आह गल मनो, पर यह नहीं हैगा भी जोर जबरदस्ती है। सो ये वधिया कीता मारकानी साहब ने कहा भी अपनी टीम नूं वापस आ जाओ, कोई लोड़ नहीं, कोई नहीं असीं देख लवांगे, हैं जे वो टैरिफ लाउंदे आ तां असीं कहड़ा फिर पिछे हट जांगे। ते लो जी प्रेम गिल साहब साडे नाल जुड़े आ, हाँ जी भाजी सत श्री अकाल।
2: हाँ जी सत श्री अकाल।
1: हाँ जी सर, की हाल चाल?
2: बहुत वधिया, बहुत वधिया। मैं
1: जी जी तुसीं लाइन ते हो सर? हाँ जी
2: हाँ जी हाँ जी भाजी, जिदा हम भाजी होनी गल कह गया इमरान खान की ना, असल जो वधिया

0: Sound Live and Cellular Point present AmiWare Live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valio Ready Hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: A1 Cakes and Pastries 1997 to thadi seva karda aa reha hai. Cakes, pastries, mithaiyan, samosas te party decoration bhi lai sakde ho. Nakal karke cakes te pastries bechan walean to bacho te Jaspal Nagra nu phone karo. A1 Cakes
2: galiye. Namaskar, Sasikal, main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chowki. Maan tu badaya mera dukh saare taal ke. On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hu ki ye sham म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी. हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब ने अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है, सबके साथ आना है. सो गाइस, सी यू ऑन 4th.

0: India, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: Pehla aaya si badi mohabbat di thi, umeed kar raha is baar bhi tujhe aashirwaad dogi.
2: Ve aa ja to main nal nachiye, nachiye paanch baah pa. Ve aa ja to main nal nachiye.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Kataria Tours and Travel.
2: 32, 55, 80.
3: 93.
2: 80. गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905 450 2828, 905 450 2828.

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होगा और आज का दिन भी अच्छा चल रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के 1 बजे वतनों दूर तुहाडे लई पेश किया जाएगा, हिंदुस्तान तो खबरां होणगियां। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। अज 6:32 ते सूरज आया, 8:07 ते चले जाना। मामा चांसियों अज 6:39 ते शाम नूं आएगा, 2:30 ते उन्हें चले जाना। अज दा तापमान 23-24 डिग्री तक रहेगा। सारा दिन बदलवाई नाल हल्की हल्की बारिश सारा दिन पैंदी रहेगी। कल नूं 26 डिग्री तापमान, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड अते हल्की हल्की बारिश पैंदे सार नजर आउंदे ने। बुधवार नूं भी कुछ ऐसा ही मौसम है, तापमान 27 डिग्री। थर्सडे नूं भी ऐसा ही मौसम है, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं भी ऐसे मौसम है, लेकिन थंडर स्टॉर्म झखड़ चोले काफी कुछ होएगा, तापमान 26 डिग्री। संडे सैटरडे नूं जाके सूरज चमकेगा, तापमान 25 डिग्री रहणगे। ब्लू जी वाले कल 8 दे फर्क नाल यंकी तो हारे और इहदे नाल नाल अज छुट्टी है। कल नूं कैंसर सिटी रॉयल नाल उहनां दे मैच होणगे। उधर इंग्लैंडिया ने यूक्रेन नूं कहा भी कोई ना मित्र, असीं तेरे नाल हां। उस गुस्से जाके जेड़ा मास्को है उन्हें आपका जेड़ा अंबेसडर यूके तो वापस सद लिया है। इंडिया का मैच होया क्रिकेट का, श्रीलंकन ने बनाए 8 रन 2 विकटां ते, लेकिन उस तो पहला इंडिया वाले ने 503 रन बनाए सीगे 9 विकटां ते। अजकल साइकिल मोटरसाइकिल सजे खबे भजाई जाते हैं, लेकिन हैमिल्टन दे विच सैटरडे वाले दिन शाम जे नूं एक गड्डी विच एक साइकिल वाला टकराया, उस बेचारे की मौत हो गई। AI टेक्नोलॉजी डिपेंड करता कड़े पासे तो यूज करते हो, चंगी भी है कई कारण करके। जो नकली रील बना बना चढ़ाते AI ना, वह माड़ी भी है। फॉर एग्जाम्पल साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी वाले ने दसिया कि एडवांसिंग न्यू आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यूज करके, इन्होंने टूल यूज करके एक नवी जी ड्रग बना रहे ने, जेड़ा कि कैंसर नू छेती रिकवर करने विच कवर करेगा।
1: मिरर्स फ्री विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक, कॉल 9056711800 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए भी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन।
1: जनक ज्वेलर्स, जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच तुहानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 9052308800।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL because we care.
6: Truck you. Are you ready?
0: टिक्का जंक्शन ले 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम, 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम, 6474294040। तुसी इनारे बैंकुट हॉल या लॉन्ज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम, 6474294040, 647-429-4040।
7: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
8: Chintu putte?
9: Haan ji madam ji.
8: Mainu eh dass ke tu vadda ke tere pita ji vadde?
9: Madam ji main.
8: Murkha o kive?
9: Madam ji dekho na, main hun apni mummy naal nahi samda, par mere papa je vi samdeya.
10: फिट्टे मुतेरे।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
4: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
4: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
5: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
4: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
5: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
4: 416-509-1509
5: और विजिट insuranceforyou.ca।
6: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets si pal de vichon Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne ja tusi visa services di pal de vichon puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar
7: je mainu yaar na mile te mar jaawa je mainu pyar na mile te mar jaawa
8: What's up everybody, this is Jasmine Sandler te tusi sun rahe ho Vatnon Dur with Sukhi Nijjar।

0: लो जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों लई खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
1: जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले लेनिया होन या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर कुमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
3: जी हाँ चांदी के फैंसी सेट चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल
4: इतनी बस नहीं जेंट्स ले चांदी के कड़े चांदी की चेन चांदी के ब्रेसलेट
3: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
4: गोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट
3: 6473393521
4: 6473393521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट
5: जी दोस्तों तुसी जुड़ चुके हो प्रोग्राम सारंगे दे नाल मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत महल इस प्रोग्राम विच गल्लां बातां होणगीआं गीत संगीत होवेगा स्पोंसर वाली जानकारी दित्ती जाऊगी पंजाब दी धरती तों सुवन सिंह टैणा जी पंजाब दीआं नवीआं ते ताजीआं खबरां लैके भी पेश होणगे अज दा प्रोग्राम जिहड़ा साडा हैगा जूनी ग्लोबल तों लाइव ऑन लोकेशन कीता जा रिहा हैगा ते राजवीर बोपारा इज लाइव ऑन लोकेशन पहुँच चुके ने उहनां नूं भी आपां अगले लिंक दे विच मिलदे आंगे ते जूनी ग्लोबल दे उप्पर की नवां चल रिहा हैगा की पंजाब गवर्नमेंट दे ग्रांट दे संबंधी की अपडेट नवीं आई ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਮੀ ਵਰਕ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ ਡੋਟ ਕੋਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮੀ ਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम समाप्त करना समा चुकिया। हुण तुसीं सुणोगे देश परदेस प्रोग्राम। तुहानू आटो इंश्योरेंस की जरूरत है, तुहानू होम इंश्योरेंस की जरूरत है, तुहानू कमर्शियल इंश्योरेंस की जरूरत है, तां तुसीं मेरे नाल संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर नोट कर लो। साडे कोल बहुत सारे इदां दे ग्रुप हुंदे ने जिहदे विच असीं तुहानू बहुत भारी डिस्काउंट दवा सकते हैं। कोई 10%, 15%, 20%, ईवन के 25% तक भी डिस्काउंट हुंदे ने। मेरा नंबर नोट करो 6476278820, 647-627-88, माफ करना 647-627-88 भी उपर तुसी मेरे न संपर्क कर सकते हो। तो मैनू देवो इत इजाजत, तो रब रखा, सत श्री अकाल।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार आमी वेयर
6: मैं किथे बैठे आ करूं आओ जट खब्बी सीट पे बंदूक रख दे
5: यू साउंड लाइव एंड सेल्यूलर पॉइंट प्रेजेंट आमी वेयर लाइव इन टोरंटो August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444